0: to pull out of Wimbledon. From Sky News, I'm AJ Walsh.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
2: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
1: मोहब्बत है क्या चीज, कुछ तो कहो, कहो ना, बोलो।

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

साहेब, ओ साहेब, पंछी पिंजरे से छूट गए, सब अपने वादे टूट गए, लो साहेब हमसे रूठ गए।

निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानको सी भी सच सोचे सोच न हो वही जे।

ओ मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख

ना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
1: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
2: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
4: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
6: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
7: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
3: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
4: बीकानेर वाला परंपरा भी
5: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फोर्ड, IG26HA। कॉल 07555-50-6015।
6: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना, मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।

0: से निराला। मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Across Greater London, this is Kajal on Breakfast.

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
2: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी.
3: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो, TW3 1QT. कॉल करे 07487-687-885.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
5: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. It's summer on the Like a Radio Network.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 our line.
2: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Southall Travel.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
7: Shaam chalne lage.
6: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.

0: ¡Excelsior!
1: Good morning. स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की महफिल में। मंगलवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 4 तारीख और वक्त हो गया भाई हमारी आपकी मुलाकात का। 10:05 हुआ चाहते हैं ब्रिटिश घड़ियों में। आपके यहाँ क्या बजा है? अरे आपके यहाँ रेडियो बजा है भाई, मनोरंजन प्रोग्राम सजा है। तो आप जुड़ जाइए अपने इस कार्यक्रम के साथ। माय नेम इज रवि शर्मा और मैं दोपहर बाद 1 तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ ब्रिटिश समय के अनुसार। थैंक्स टू काजल, कल फिर हाजिर हो जाएंगी ब्रेकफास्ट शो लेकर काजल। तो लीजिए साहब, खोलते हैं डायरी, पढ़ते हैं शायरी और फिर जोड़ते हैं गीत से। बात दिल की करें क्योंकि भाई दिल वाले श्रोता सुन रहे हैं। नाम पे तेरे मचल जाता है दिल, नाम पे तेरे मचल जाता है दिल, मेरे हाथों से निकल जाता है दिल, तेरी नजरों से नजर मिलती है जब, लड़खड़ाता है संभल जाता है दिल, फिर नहीं रहती किसी चीज की तलब, फिर नहीं रहती किसी शय की तलब, जब किसी के दिल से मिल जाता है दिल।
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. Reminisce those classics on Leica Gold.
1: उम्र गुजरी है तुम ही को पूजते, कौन कहता है बदल जाता है दिल, फिर नहीं रहती किसी शय की तलब, जब किसी के दिल से मिल जाता है दिल,
5: दिल से दिल टकरा,
1: जब किसी के दिल से मिल जाता है।

सेलिब्रेशन इज ऑन। किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है भाई, दुनिया में कौन आ रहा है? आ चुका है, छा चुका है, और भाई बहुत सारे लोगों का दिल बहलाकर दुनिया से जा चुका है।

0: महफिल के ऐसा पूरी दुनिया सजी, उसकी आवाज जब गूंजी। कार्यक्रम शुरू करते हो भाई, ये आवाज हमारे कंप्यूटर ने सुनवा दी, लेकिन बता दूं आपको कि आज जन्मदिन है इनका, आभास कुमार गांगुली। सुना है नाम, आभास कुमार गांगुली वॉज बोर्न ऑन 4th of August in 1929। कार्यक्रम शुरू किया तो भाई पहला गीत तो चुपके चुपके जब भी तेरी जब दिल से दिल टकराता है, रफी साहब की आवाज में था। लेकिन दूसरा गीत आभास कुमार गांगुली यानी किशोर कुमार खंडवा वाले लता जी के साथ ये गीत गा रहे हैं।
1: मैं तुझ पे सदके कर दूं अपनी जा,
2: महफिल का सजदी।
0: 4 अगस्त 1929 में जन्मे थे। आज वैसे भाई बाली भाई तो फिल्मी दुनिया के सितारों की जन्मदिन पर उनकी पूरी कहानी जुटा के लाते हैं, लेकिन एक आध गीत हम भी सुनवाएंगे और थोड़ा बहुत जो है मसाला हम भी आप तक पहुंचाएंगे। किशोर कुमार एक ऐसी आवाज, क्या बताएं साहब, ही वॉन 8 फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के और 28 नॉमिनेशंस एंड होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर विनिंग एंड नॉमिनेटिंग द मोस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स इन दैट कैटेगरी। याद करेंगे किशोर कुमार के कई दीवाने हैं। एक तो हमारे दोस्त थे भाई, अब दुनिया में नहीं है, उनका भी नाम किशोर था और हम केशु कहते थे, मॉरिशस के वो भाई हमारे लिसनर थे। लेकिन किशोर कुमार के इस कदर दीवाने थे कि जब उनकी फरमाइश आती तो वो किशोर कुमार का ही गीत मांगते थे। आज दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते, लेकिन 13 अक्टूबर 1987 में अचानक निकल लिए किशोरदा। तो साहब आज है 4 अगस्त 2026 मंगलवार का दिन और बहनों भाइयों आज का मनोरंजन जन्मदिन मनाने वालों के नाम समर्पित करें तो सबसे पहला नाम होगा आभास कुमार गांगुली, यानी जो किशोर कुमार नाम से गायक कलाकारों की भाई श्रेणी में प्रसिद्ध हुए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
3: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. आज फिर बता रहे हैं आपको कि भाई रेट अच्छा चल रहा है, पैसे अपनों को भिजवाना चाहे तो मौके का फायदा उठाइए। क्या रेट चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके दे रहे हैं 1 पाउंड के बदले 127.65 रुपीस मैक्सिमम। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीस अप्लाई। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Ye hai Leica Gold.
5: Leica Gold.
6: This part of the show is brought to you by Durandar.
7: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
6: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: You know that clean, fresh feeling after brushing? Sidayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Sidayu, Ayurved that fits your life.
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
11: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99 exclusively at quality food stores.
12: Be part of a historic grand opening.
13: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
12: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
13: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.

0: सेटको फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, Ragasan.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
6: लौट आइए संगीत की दुनिया में और एंजॉय कीजिए ये सदाबहार आवाज। लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो, मनोरंजन प्रोग्राम रवि शर्मा के साथ।

जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता है भाई। संगीत के सफर में मेरे जो हम सफर थे ना, सबसे पहले छोटी उम्र में मेरे बड़े भाई थे और वो ऐसे संगीत प्रेमी थे। दरअसल उन्हें जाना चाहिए था इस फील्ड में, लेकिन वो तो सैनिक बन गए और इंडियन नेवी ज्वाइन करके वो तो भाई एक फौजी के रूप में उन्होंने ज़िंदगी जी। फिर वो मर्चेंट नेवी में चले गए, लेकिन बड़े भाई से मैंने संगीत की कदर करना सीखा। ये गीत जब बज रहा होता था, रास्ते में एक जगह थी जहाँ पर गीत जो है वो लाउडस्पीकर में बजते थे, वो मैदान था और वहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन चलता रहता था, पर ये गीत कई बार दोहराया जाता, बजाया जाता और भैया कहते थोड़ा रुक जाओ ये गीत पूरा सुन के चलेंगे। और साहब किशोर कुमार का ये गीत खत्म होता तो फिर कोई और गीत चल पड़ता किशोरदा की आवाज में, और वो कुछ गीत तो मुझे ज़बानी याद हो गए। भाई साहब वहां से मूव होने के लिए तैयार ही नहीं होते थे, अभी चलेंगे। मैं उन्हें याद दिलाता कि घर पे हम लेट हो रहे हैं, मम्मी पापा जो हैं, माता जी पिताजी नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, स्कूल छूटे हुए इतनी देर हो गई है। भाई बस्ता लटकाए वहां खड़े होकर के हम दरवाजे पर जहां ये गीत बजते थे सुनते और बार बार सुनते, लगातार सुनते, और किशोर कुमार हमारे दिल में बसते चले जाते।

0: जीवन के प्यार के।
1: भाई किशोर कुमार की तरह जो ना, जैसे किशोर दा हमसे बिछड़ गए लेकिन आवाज उनकी जिंदा है, बड़े भाई की यादें भी जिंदा हैं। अभी 2 महीने पहले वो भी इस दुनिया से विदा हो गए। हमारी उम्र में सिर्फ 2 साल का ही फर्क था, लेकिन संगीत के प्रति उनका समर्पण और किशोरदा के और रफी साहब के तो बुरी तरह दीवाने थे। बड़े भैया विष्णु नाम था उनका। दिल में बसे हैं भाई भी, दिल में बसे हैं किशोरदा और रफी साहब भी, और संगीत का ये पूरा साम्राज्य। तो साहब आज किशोरदा का जन्मदिन है, उन्हें याद करेंगे। मैंने जैसा बताया कि भाई इतना विशाल खजाना है गीतों का उनकी आवाज़ों में कि सारे गीत तो एक महीने में क्या, एक साल में क्या, मैं कहता हूँ सदियों तक जो है नहीं सुनवाए जा सकते। इतने सारे प्यारे प्यारे गीत हैं किशोरदा की आवाज़ में। खैर ये गीत आपको कैसा लगा?
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: Like a gold.
1: तो भैनो भाइयों अब समय हो गया है 10:30 यहाँ ब्रिटिश घड़ियों में, और ये वक्त है समाचारों का। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। एक बार फिर भाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वो क्या कहते हैं बयान दोहराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत फिलहाल जारी है, और उन्होंने कहा कि ईरान के लिए एक अच्छे समझौते पर दस्तखत करने का ये आखिरी मौका है। व्हाइट हाउस में प्रेस से बातचीत के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि बातचीत ईरान की रिक्वेस्ट पर शुरू हुई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईरान की लीडरशिप पर दोहरा रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरानी लीडरशिप बातचीत के लिए बैठक की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से पब्लिकली ये दावा किया जाता है कि दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पहले से ही अमेरिकी नेवी के पूर्ण कंट्रोल में है और उनकी इजाजत के बिना ईरान तक कुछ भी नहीं पहुंच सकता, और ये हालत तब तक बनी रहेगी जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता या फिर ईरान सरेंडर नहीं कर देता। वेल, या तो समझौते पर दस्तखत करे या सरेंडर करे, ये भाई शर्त है डोनाल्ड ट्रंप की। इस खबर के अलावा पाकिस्तान ने पेट्रोलियम डिवीजन ने 4 अगस्त से लागू होने वाली पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने दोनों की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। पेट्रोलियम डिवीजन की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार पेट्रोल की प्राइसेस में 4.08 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। कटौती के बाद पेट्रोल की नई प्राइसेस 331.95 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तय की गई है। वहीं हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2.45 रुपये पर लीटर की कमी की गई है, और इसके बाद डीजल की नई प्राइसेस 389.93 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। भारत से आने वाली खबरों में 3 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे, और भाई इनमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर हार गई है जबकि 1 सीट पर उसने जीत दर्ज की है। अब 2 सीटों पर मिली हार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इलेक्शन के रिजल्ट्स पर गंभीरता से आत्ममंथन करने की बात कही है। कल घोषित हुए बाई इलेक्शन के नतीजों के बाद नितिन नवीन ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिएक्ट करते हुए लिखा कि 3 विधानसभा बाई इलेक्शंस में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट के बाई इलेक्शन में जीत दर्ज की है। इस पर उनकी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम सभी बहुत खुश हैं और ये सीट बहुत मुश्किल थी क्योंकि यहाँ तो पिछले कई सालों से बीजेपी का दबदबा था, वो जीतते आ रहे थे। ये जीत हमारे लिए इसलिए भी खास है और इससे हमारी खुशी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने दतिया विधानसभा बाई इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत पर रिएक्ट किया है। मोहन यादव ने कहा कि ये कांग्रेस की सीट थी जो कांग्रेस के पास ही है। ये बात अलग है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। ये दूसरी सीट थी जो बीजेपी हार गई है, एक सीट उन्होंने जीती है, उनके हिस्से में आई है। 3 सीटों पर बाय इलेक्शन हुए थे। व्हाट्सएप ने कल 3 अगस्त को कथित तौर पर भारत समेत कई देशों के कुछ यूजर्स के अकाउंट्स को 24 घंटे तक रिव्यू के लिए रिकॉग्नाइज किया है। इस दौरान प्रभावित यूजर्स के लिए ऐप की सभी सुविधाएं टेम्परेरीली रूप से बंद रही, जिसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर की। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नए टैरिफ के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने 60 व्यापारिक साझेदार मुल्कों से आने वाले सामान पर लगाए गए 10-12.5% टैरिफ को चैलेंज किया है। उनका कहना है कि यह फैसला मनमाना है, तर्कहीन है और कानून के खिलाफ है। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने फॉर्मर फील्डिंग कोच टी दिलीप के 5 साल का कार्यकाल खत्म होने पर सोशल मीडिया पर उन्हें सम्मान दिया है, एक संदेश साझा किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर दिलीप के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए उन्हें लेजेंड बताया और पर्दे के पीछे टीम के लिए उनकी मेहनत की जमकर तारीफ की है। डीएमके नेता और तमिलनाडु विधानसभा में अपोजिशन लीडर उदयनिधि स्टालिन को आज चेन्नई स्थित उनके घर से पुलिस ले गई। उन पर एक्ट्रेस त्रिशना कृष्णन के खिलाफ कथित तौर पर सोकाल्ड अपमानजनक इंसल्टिंग टिप्पणी करने के इल्जाम में एक एफआईआर दर्ज हुई है। और उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मदरसा अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। भाई ये विवादित बयान है जिस पर वहां पर काफी हंगामा हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये असलियत है कि भारत और बाहरी दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकी हमले मदरसों में दी जाने वाली तालीम का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि मदरसा चाहे बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो या भारत का हो, ये अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। उन्होंने कहा कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं और आज फिर दोहराता हूं कि जो कोई भी मदरसा की शिक्षा लेता है, जो कोई भी स्टूडेंट, वो भारत माता की जय नहीं बोलता, वो वंदे मातरम नहीं गाता और उसकी सोच एकदम धीरे धीरे आतंकवादियों जैसी होती चली जाती है। ईरान के प्रेसिडेंट के इस्तीफे की अटकलें सुनाई पड़ रही हैं। ईरानी मीडिया ने प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकान का एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, वे अपने पद पर बने रहेंगे। दरअसल इससे पहले ईरानी मीडिया और सोशल मीडिया पर खमनई परिवार के करीबी मौलवी मोहम्मद बगर खराजी के एक बयान को साझा किया गया था और उसमें दावा किया गया था कि मुज्तबा खमनई ने कहा है कि अगर पेजिशकान एक बार फिर इस्तीफा देते हैं तो हम इस बार उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे, कबूल कर लेंगे। और भारत की केंद्र सरकार ने दावा किया है कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 फरार अपराधियों को, क्रिमिनल्स को वापस भारत लाया गया है। सरकार ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत ने भगोड़े क्रिमिनल्स से निपटने के लिए खुफिया जानकारी और तकनीक पर आधारित इंटीग्रेटेड सिस्टम विकसित किया है, डेवलप किया है। मोदी सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पिछली सरकारों में भगोड़े क्रिमिनल्स को वापस लाने की पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं थी, जबकि मोदी सरकार ने इसे नेशनल प्रायोरिटी बताया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: दिस इज लाइक अ गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
1: लौट आइए संगीत की ओर।

0: जी को काबू में रखो, ये जी पिटवा देगा।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम। ग्रैब योर कोका बोल टुडे।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और साहब, साउथ ऑल ट्रेवल का वो संदेश जो कई दिनों से हम आपको याद दिला रहे हैं, आज फिर दोहरा रहे हैं। साउथ ऑल ट्रेवल बड़े खुश हैं ये अनाउंस करते हुए कि FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ ऑल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 and they are at all protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Ye hai
4: Leica Gold.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।

0: at the iconic Harrow School on Saturday, the 8th of August, from 3 p.m. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance, and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners like a radio network.
1: Dad!
2: What's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
2: I will run down to the money exchange now.
1: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
2: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
7: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
8: परंपरा भी
9: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB. कॉल 07795181001.
10: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
11: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
12: गीत के साथ साथ बात खेलों की करें तो भाई, एक ऐसा खेल है जो ओलंपिक में या कम से कम कॉमनवेल्थ खेलों में शामिल होना चाहिए, जिसे कहते हैं आंख मिचोली. आंख मिचोली अगर भाई एक कंपटीशन में शामिल हो तो चैंपियन हम ही बनने वाले हैं.

और भाई ये बात करें आज कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत के लोग, ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स जो चल रहे थे 2026 के, ये गेम्स भाई अब समाप्त हो चुके हैं, कल समापन हो गया इनका। भारत ने इन खेलों में 13 गोल्ड के साथ 39 मेडल जीते और पदक तालिका में चौथे पायदान पर रहा भारत। उसने 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Two businesses.
2: Same town.
1: Same service.
2: One appears on page one of Google.
1: The other doesn't.
2: Guess which one gets the customer?
1: The truth is brutal.
2: The first page of Google gets the business.
1: Everyone else gets what's left.
2: So here's the real question.
1: When your customers search for what you sell, do they find you?
2: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
1: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a radio और Like a gold आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
4: और देखते हैं ये गीत हमें समाचारों तक पहुंचा देगा.

0: स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। अगर आपने रेडियो अभी सुनना शुरू किया है तो भाई बता दूं कि मनोरंजन कार्यक्रम 10 बजे शुरू होता है और आपने एक घंटे का कार्यक्रम मिस कर दिया है अगर आपने अब सुनना शुरू किया है तो। 10 से 1 बजे के बीच मैं रवि शर्मा आपकी सेवा में हाजिर रहता हूं और 11 बजे की खबरों के बाद पेश करता हूं थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के इस विचार में हम आलेख शामिल कर रहे हैं अजय ठाकुर जी का, जिन्होंने एक बड़ा मीठा सा निमंत्रण भी आप सबके लिए भेजा है। भाई कहते हैं भारतीय उच्चायोग और इंडियन डायस्पोरा जो यहाँ यूके में यूरोप में बसे हैं एक जबरदस्त आयोजन कर रहे हैं। नोट कर लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होता है, लेकिन भाई ये कहते हैं कि यहाँ सारी कम्युनिटीज मिल करके और हाई कमीशन भी साथ में सहयोग दे करके स्वतंत्रता दिवस का आयोजन कर रहे हैं 22 अगस्त को, जैसा कि पिछले कई वर्षों से बड़े ज़बरदस्त ढंग से मनाया जाता है, हज़ारों की संख्या में लोग जमा होते हैं। तो ये आयोजन पिछले साल की तरह नवनेट सेंटर हेज प्रिंटिंग हाउस लेन में जो है, बहुत बड़ा वेन्यू है, वहाँ आयोजित किया जा रहा है और वहाँ भारतवंशी मिल करके अपना ये त्यौहार एक मेले के रूप में, एक शानदार आयोजन के रूप में भाई मनाएंगे, जिसमें फ्री एंट्री, फ्री कार पार्किंग, फ्री एंटरटेनमेंट, देशभक्ति के गीत, फ्री फूड, यानी सब कुछ फ्री है क्योंकि आप ही का ये आयोजन है। तो वो कहते हैं सबको इनवाइट करना मत भूलिएगा। भारतवंशी दुनिया में जहां भी हैं बड़ी धूमधाम के साथ अपना ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क में मनाया जा रहा है, यहाँ कई शहरों में ये मनाया जाएगा, लेकिन लंदन में 22 अगस्त को प्रिंटिंग हाउस लेन हेज में स्थित नवनेट सेंटर में ये आयोजित किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच खूब धूमधाम रहेगी, झंडा लहराया जाएगा, जनगणमन गाया जाएगा। तो भाई ये तो इनविटेशन है इंडियन डायस्पोरा और भारतीय हाई कमीशन की ओर से आप सबके लिए। अब अजय ठाकुर जो आज का चिंतन भिजवा रहे हैं, बता रहे हैं रवि जी आज एक खास दिन है, आप किशोरदा का जन्मदिन मना रहे हैं ना, लेकिन एक और बड़े व्यक्तित्व का आज जन्म हुआ था और उनके साथ जुड़ी है एक बहुत ही गौरवमय कहानी। तो कौन है वो भाई? नाम है उनका उदय सिंह राणा। याद आ रहा है आपको? अरे साहब, बचपन में हमने ये कहानियाँ पढ़ी थी, अजय याद दिला रहे हैं। उदय सिंह राणा, अरे साहब राणा नहीं, उन्हें कहिए महाराणा। हाँ जी, महाराणा प्रताप के पूज्य पिताश्री। और भाई अगर उनके बचपन की ओर लौटें, महाराणा उदय सिंह 1522 में जन्मे थे। वो उदय सिंह जिन्हें बचाने के लिए उनकी धाय ने, उनकी आया ने, पन्ना धाय ने अपने बेटे का बलिदान दिया था। क्या गौरवमय गाथा है ये। यूं तो भाई राजस्थान की कहानी ने, राजस्थान की धरती ने, राजस्थान के इतिहास ने बहुत सारी कहानियां दी हैं, लेकिन ये गौरव गाथा जिसमें अपनी कोख से जाए अपने बच्चे का बलिदान देकर के महाराणा उदय सिंह का जीवन बचा करके पन्ना धाय ने इतिहास में अपनी जगह बनाई, ये घटना सुनिए। अगर पन्ना धाय ना होती तो उदय सिंह महाराणा नहीं होते, वो नहीं होते तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते, उदय सिंह नहीं होते तो आज राजस्थान का ये विशाल नगर जो उदयपुर है वो भी नहीं होता, क्योंकि वो उदय सिंह राणा ने ही बसाया था। मेवाड़ के इतिहास की सबसे मार्मिक और त्यागपूर्ण कथा, पन्ना ढाय के अद्वितीय बलिदान की कथा सुनिए। अजय जी का भेजा आलेख, अजय ठाकुर का आलेख, आज का चिंतन।
1: चिंतन, चिंतन।
0: समय था 16वीं शताब्दी का, मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। महाराणा सांगा के पुत्रों में से एक थे कुंवर उदय सिंह, जो आगे चल करके मेवाड़ के महाराणा बने और उदयपुर नगर के फाउंडर के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। लेकिन उदय सिंह जब छोटे थे तब उनकी देखभाल की जिम्मेदारी पन्ना ढाय के पास थी। पन्ना ढाय जो केवल उनकी ढाय मां नहीं थी, वे उन्हें अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। उनका अपना बेटा था, एक चंदन नाम था उसका। और उस समय बहनों भाइयों मेवाड़ में सत्ता को लेकर एक स्ट्रगल चल रहा था। बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, कत्ल कर दिया था, और अब वो अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा यानी रुकावट नन्हे उदय सिंह को भी खत्म करना चाहता था। एक रात की बात, पन्ना ढाय को खबर मिली कि बनवीर तलवार लेकर बालक उदय सिंह का कत्ल करने के लिए आ रहा है। सोचिए, एक तरफ मेवाड़ का भविष्य और दूसरी तरफ थी पन्ना की अपनी औलाद चंदन। पन्ना ढाय ने एक क्षण में यह फैसला ले लिया। उन्होंने बालक उदय सिंह को एक टोकरी में छुपाकर सिक्योर जगह पर, सुरक्षित स्थान पर रवाना कर दिया। अपने विश्वास पात्र सेवक के हाथ और फिर अपने सोते हुए बेटे चंदन को उठाकर उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया और ऊपर वही चादर डाल दी जो उदय सिंह राणा ओढ़ते थे। कुछ ही क्षण बाद बनवीर तलवार लेकर कमरे में पहुंचा। उसने कड़क कर पूछा, कहां है उदय सिंह? पन्ना ढाई ने बिस्तर की ओर इशारा कर दिया, जहां उनका अपना बेटा चादर में सोया हुआ था, चंदन। बनवीर ने बिना ये जाने कि बिस्तर पर कौन सो रहा है तलवार चला दी और पन्ना ढाई अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटे चंदन का बलिदान देखती रही। अपनी चीख को दबा लिया, आंसुओं को छुपा लिया। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? लेकिन पन्ना ढाय को पता था कि अगर बनवीर को पता चल गया कि उदय सिंह बच गया है तो मेवाड़ की राजवंशीय परंपरा को यह खत्म कर देगा। इसके बाद पन्ना ढाय बालक उदय सिंह को लेकर के सुरक्षित स्थान की ओर चली और आखिर में उन्हें कुंभलगढ़ में आश्रय मिल गया, शरण मिल गई। वहां उदय सिंह का सुरक्षित पालन पोषण हुआ। समय बीता, उदय बड़े हुए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मेवाड़ का अधिकार फिर से प्राप्त किया और 1540 में बनवीर को पराजित करके वो मेवाड़ के महाराणा बने। महाराणा उदय सिंह, आगे चलकर उन्हीं के पुत्र हुए महाराणा प्रताप। बहनों भाइयों, पन्ना ढाई ने केवल एक राजकुमार की जान नहीं बचाई, एक शाही वंश, एक राजसत्ता और एक महान ट्रेडिशन की रक्षा की। उन्होंने अपने मातृत्व का सबसे बड़ा बलिदान देकर मेवाड़ के भविष्य को बचाया। सलाम करते हैं हम उस ममता को और उस देश प्रेम को।

और बहनों भाइयों, भारत भूमि को यह गौरव प्राप्त है कि जब जब उसे जैसे जैसे महापुरुषों की आवश्यकता हुई, उनका अवतरण हुआ, वो प्रकट हुए, उन्होंने बलिदान दिए, उन्होंने देश की रक्षा की।

0: चिंतन।
1: यह अपना राजपुताना नाजी से तलवारों पे, इसका सारा जीवन बीता बरछे तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनिया अंगारों पे। यह मुल्क मराठों का, ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को उसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। क्यों ना प्रणाम करें उस भारत भूमि को, देव भूमि को। तो भाई आज के चिंतन में शामिल आलेख आज बता दूं फिर से, महाराणा उदय सिंह का जन्मदिन है। महाराणा उदय सिंह भाई मेवाड़ के वो महाराणा जिन्हें बचपन में कत्ल करने की कोशिश की और एक उनकी आया माने, उनकी पन्नाधाय माने उनका जीवन बचाया अपने बेटे का बलिदान देकर। 1522 में उदय सिंह राणा जन्मे थे। उन्हें याद करें तो पन्नाधाय का बलिदान याद आता है, मेवाड़ याद आता है, चित्तौड़ याद आता है। ये वही उदय राणा, महाराणा उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर बसाया और वही जिनकी संतान महाराणा प्रताप ने हमें गर्व से सीना तान कर जीना सिखाया। आज के चिंतन के लिए आलेख हमें भारतीय उच्चायोग से हमारे मित्र अजय ठाकुर ने भिजवाया। गीत जो हमने आपको सुनाया भाई वो देशभक्ति का गीत स्वर्गीय प्रदीप जी की रचना थी। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है। याद दिला दूं आपको, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल किया जाता है।
0: चिंतन, चिंतन।
1: आइए अब लौटते हैं अपने मूल रंग की ओर, मनोरंजन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: State Bank of India UK. आज एक पाउंड के बदले 127.65 रुपए दे रहे हैं भाई भारतीय करेंसी में। If you want to send the money to your friends, your family members, it's a good time. 127.65 rupees in Indian currency. For £1, you can transfer via branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app. Remember, terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Laika Gold. 10:35 AM.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
6: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
4: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959 250376.

0: जिंदगी वहाँ सेक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, balle balle! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
9: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
10: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
11: परंपरा भी, फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
12: लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, बी अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। डिटेल्स एट laikaradio.com एंड द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप। Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
13: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
14: Travel Hub.
13: At all protected.
12: Leica. Feel good hits in the sun with Leica Gold.

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

0: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: तो साहब बैक टू बैक संगीत आप सुन रहे थे और इनमें एक गीत अभी आपने किशोर दा की आवाज में सुना। आपको बता दें कि आज किशोर कुमार साहब का जन्मदिन, जिसे हम किशोर जयंती कह सकते हैं भाई, वो है। और ऐसे अवसर पर दिन भर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, हमारे साथी प्रेजेंटर्स विशेषकर बाली भाई, और उनकी आवाज़ के कई दबे छुपे गीत आपको सुनने को मिलेंगे। लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं इस समय मनोरंजन।
2: लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: किशोर दा के मैदान में उतरने से पहले भाई कुछ और गायक कलाकार जो है धूम मचा रहे थे, उनमें शामिल हैं मुकेश जी, रफी साहब, मन्ना डे, सभी आवाजें एक से बढ़कर एक। और ऐसे में फिर किशोर दा आए जिन्होंने कुछ हटकर गीत गाए।
4: देखो, देखो, देखो, देखो मैं

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a extra podcast update.
3: और आपको बता दें कि भाई लाइका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड नंबर 27 इज देयर, ऑनर बेस्ड अब्यूज, बहुत बर्निंग टॉपिक है। दीप राजा और खुश भाई डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी ये जानकारी जो है इसमें आपको मिलेगी। दिस इंस्टेंस एपिसोड अनकवर्स द हार्श रियलिटी ऑफ ऑनर बेस्ड अब्यूज इन आवर देसी कम्युनिटीज। बहुत है, अब ये मत सोचिए दबी छुपी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिस पर भाई क्या कहें, अब आप देखने के बाद सोचिएगा कि क्या किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold.
4: Laika Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
9: T's and C's apply.
10: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
11: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
10: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
11: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
10: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
11: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
13: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.

0: वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
1: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
0: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
1: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
0: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
1: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ।
1: All Monster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
4: Like a Cool. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
5: मेकिंग समर फील बेटर दिस इज लाइका गोल्ड

हर हंसी चीज के कदरदान थे भाई किशोर कुमार, रस के फूलों के बीमार। चार शादियां की नहीं, एक एक बार मेरी, ऐसे नहीं चारों इकट्ठी नहीं। पहली पत्नी रूमा गुहा, जिनसे उनके सुपुत्र भाई अमित कुमार हैं, और दूसरी शादी, उनसे तलाक उनका हो गया 8 साल बाद। फिर उन्होंने मधुबाला से शादी की, 9 साल तक वो शादी चली। फिर योगिता बाली के साथ विवाह बंधन में बंधे, क्योंकि मधुबाला की डेथ हो गई थी 1969 में। और फिर भाई

0: योगिता बाली से भी डिवोर्स हो गया 1978 में। ये शादी बहुत कम चली, समझो करीब 1.5-2 साल, और उसके बाद आखिर में उन्होंने 1980 में लीना चंदावरकर से शादी की, और वो जो है उनके अंतिम समय तक उनके साथ रहीं। उनकी दो संतानें अमित कुमार और सुमित कुमार, जो लीना चंदावरकर से उनके दूसरे बेटे, भाई गाते हैं वो भी, सुमित भी यहाँ आए थे शो करने अमित कुमार के साथ। अमित कुमार तो आप जानते ही हैं, फेमस सिंगर हैं, किशोर दा जैसी आवाज़ कितने लोगों ने बनाने की कोशिश की, भाई लोग कहते हैं कुमार सानू उसी अंदाज में गाते हैं रहे हैं, और अमित कुमार भी गाते हैं, और भी कई गायक कलाकारों ने जो है वो आवाज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन किशोर तो फिर किशोर थे, ऐसा नहीं कोई और थे।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
2: वन एंड ओनली वन रवि शर्मा ऑन योर

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
2: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
1: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99 exclusively at quality food stores.
5: Manoranjan with Ravi Sharma.
6: और बहन भाइयों, अगला गीत हमें लेकर के खबरों तक चलेगा। भाई अगले गीत के साथ एक कहानी याद आ रही है, एक सच्ची घटना याद आ रही है। भाई अगला गीत जिस फिल्म से है ना, उसके प्रोड्यूसर जो हैं वो फिल्मी दुनिया से बड़े निराश होकर के जो है वापस लौट रहे थे, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव हुआ था। वो अपने एक प्यारे दोस्त, बचपन के दोस्त, एक हीरो के पास गए और कहने लगे कि मेरे पास ये कहानी है, मैं इसे लेकर के फिल्म बनाना चाहता हूँ, काम करेंगे? उसने कहा मेरी फीस 65,000 है। उस सुपरस्टार ने, उस दौर के भाई सुपर हीरो थे वो, उन्होंने कहा मेरी फीस 65,000 है लेकिन तुमसे 1,00,000 लूँगा। अरे कैसे दोस्त यार, मुझसे 1,00,000 रुपये क्यों? बोले इसलिए कि तुम्हारी ये कहानी है फ्लॉप, फिल्म फ्लॉप होगी उससे मेरी इमेज को ठेस पहुंचेगी, तो इमेज गिरेगी, तो इसलिए ज़्यादा पैसे लूँगा। बड़े निराश हुए। भाई जानते हैं कौन थे वो हीरो? शम्मी कपूर। अब शम्मी कपूर ने भाई ये एक तरह से इनकार कर दिया उनके साथ काम करने से। शम्मी कपूर के पिता श्री पृथ्वीराज कपूर ने भी उनसे कहा कि यहाँ से भैया अपना बोरिया बिस्तर समेट के वापस ले जाओ, अपने पिताजी का कारोबार संभालो। इतना ही नहीं भाई, उनको कई लोगों ने निराश किया और वो वापस लौटने ही वाले थे कि वो फेमस स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी। कौन थे जानते हैं वो? उनका नाम था लेख टंडन। पीछे से आवाज़ दी, लेख जी। पीछे मुड़ के देखा तो शंकर जयकिशन, दो महान संगीतकार। कहाँ चले? बोले वापस। अरे क्यों? मेरे पास कहानी है लेकिन कोई हीरो नहीं काम करने को तैयार। उन्होंने कहा देखो, हीरो तैयार होंगे, तुम्हारी फिल्म में संगीत शंकर जयकिशन का होगा, बस ये खबर निकलवा दो। और बहनों भाइयों, अगले दिन जयकिशन के घर पर सारे मिलकर के बैठे, 18 धुने उनको सुनाई गई, उनमें से 5 धुने चुन ली लेख टंडन ने। और जैसे ही पता चला कि शंकर जयकिशन उनकी फिल्म में संगीत दे रहे हैं तो फाइनेंसर्स की लाइन लग गई लेख टंडन के सामने। और फिर उन धुनों ने और उन धुनों पर सवार आवाज़ों ने ऐसी धूम मचाई कि फिल्म सुपरहिट हो गई। शम्मी कपूर भी उस फिल्म में काम करने के लिए दौड़ते हुए आए लेख टंडन के पास, मैं काम करूँगा। ऐसा असर होता है संगीत में। कौन सा गाना था भाई वो जिसने बहुत धूम मचाई? क्योंकि एक धुन लेख टंडन ने रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट की तो जयकिशन ने कहा यही धुन सबसे ज़्यादा सुपरहिट होगी लेख जी, इसे ज़रूर रखो, ये जयकिशन का वादा है, हमारा दृढ़ इरादा है, इसे ज़रूर रखो। कौन सा गीत था वो, कौन सी धुन थी वो, सुनिए रफ़ी और लता जी को।

0: आए भाई बहुत सारे लोग आए गांव में। देखिए कभी कोई ना तो फाइनेंसर मिलता था ना प्रोड्यूसर मिलता था, और डायरेक्टर लेख टंडन जो है वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे गीतों ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया। प्रोफेसर भाई मैं ये कहानी सुना रहा था, वैसे ये काम तो बाली भाई का है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा ये जानकारी आप तक पहुँचाऊँ भाई कि गीतों के कारण फिल्म हिट हो जाती हैं। आवाज देकर हमें तुम बुलाओ, रफी साहब और लता जी ने इस फिल्म को अमर बना दिया। और ये जयकिशन ने वादा किया था कि लेख टंडन जी आप ये धुने लो और फिर उसके बाद फिल्म बनाओ और देखना। फिल्म को शायद लोग भूल जाएं, संवाद भूल जाएं, हीरो को भूल जाएं, लेकिन ये धुने हमेशा गुनगुनाई जाएंगी, दोहराई जाएंगी, लोग पसंद करेंगे। पसंद करते हैं ना सुपरहिट म्यूजिक। आवाज एक और गीत था, ए गुलबदन फूलों की महक कांटों की चुभन, शंकर जयकिशन का संगीत हो, हसरत जयपुरी की शब्दावली हो, हसरत जयपुरी और साथ में शैलेंद्र भी, हसरत शैलेंद्र ने इस फिल्म के गीत लिखे थे। तो ऐसी कई घटनाएं घटी, कुछ आदमी फिल्मों से बन गए और कुछ बिगड़ गए, उजड़ गए। भाई फिल्में जो है कभी कभी तबाह भी कर देती हैं, फाइनेंशियल हालत बिल्कुल तोड़ के रख देती हैं, बड़ी घटनाएं घटती हैं फिल्मी दुनिया में। आइए लौट आइए स्टूडियो की ओर, संगीत की ओर, मनोरंजन की ओर। और याद दिला दूं बहनों भाइयों, दिस इज़ द लास्ट आवर ऑफ मनोरंजन प्रोग्राम विद रवि शर्मा, एंड 1 बजे की खबरों के बाद आपके मेजबान होंगे बाली बाली ब्रह्मभट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK, या आपको भाई बता रहे हैं कि पैसे अपनों को भिजवाना चाहें भारत में तो 1 पाउंड के बदले दे आर गिविंग 127.65 रुपीज, 127.65 रुपये का रेट वो दे रहे हैं। और यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। ये भाई रेट चल रहा है भारतीय रुपए का पाउंड के मुकाबले SBI UK में। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई। दिस इज द लाइकर रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
2: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय धुरंधर।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
5: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
4: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 0208-574-8410।
2: साफो ट्रेवल at all protected.
3: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
4: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and laikagold.com.
5: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
1: और बहनों भाइयों, जानते हैं इस सप्ताह का कलाकार कौन है? आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज बिस्वजीत चटर्जी। वेल, फेमस एज बिस्वजीत। और भाई, विश्वजीत को बिस्वजीत कहती है तो साफ पता लगता है कि भाई जरूरी बंगाली रहे होंगे। यस, अपने जमाने के हैंडसम और हिट हीरो बिस्वजीत हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक। अब जो गीत हम सुनवा रहे हैं भाई, आप सोचेंगे इसमें तो मेल वॉइस है ही नहीं, तो बिस्वजीत कहाँ फिट होते हैं? फिल्म में हीरो बिस्वजीत थे और गाने में बिस्वजीत परफॉर्म करते हैं लड़की बन करके। शमशाद बेगम की आवाज़ उन पर पिक्चराइज हुई, आशा भोसले की आवाज़ बबीता पर। बबीता मेल रोल में और बिस्वजीत फीमेल रोल में नजर आए।

0: एक तो भाई आवाजें आशा भोसले और शमशाद बेगम की, ऊपर से संगीत टोपी नैयर का। ये फिल्म किस्मत भाई अपने गीतों के कारण हिट हुई थी। विश्वजीत ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और भाई इस फिल्म में बबीता के साथ वो हीरो थे, और क्या गीत थे, क्या संगीत था, क्या कहानी थी फिल्म की। तो विश्वजीत इस सप्ताह के आर्टिस्ट हैं, उनकी कई फिल्मों के गीत आप सुनेंगे इन दिनों में। विश्वजीत भाई काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, लोग उनकी लंबी उम्र की दुआ मांग रहे हैं। इस साल जब वो अपना जन्मदिन मनाएंगे तो 90 के हो जाएंगे, और किसी ज़माने में क्या हैंडसम हीरो होते थे। विश्वजीत अब तो बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन साहब चेहरे पर वो रौनक आप देख सकते हैं अब भी उनके।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: सावन का महीना चल रहा है, सावन आ तो गया लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया, मतलब झूम के नहीं आया, घूम के आया पर झूम के नहीं आया।

0: आया सावन झूम के। रफ़ी साहब और लता जी, भाई ये दो आवाज़ें तो क्या कहें, सदियों तक, युगों तक जो है संगीत प्रेमियों के दिलों में धड़कने जगाती रहेंगी, लोग गुनगुनाते रहेंगे और रफ़ी जी और लता जी याद आते रहेंगे।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: भाई हितेश भाई, आपने इंडिया से जो लतीफा लिख के भेजा वो आधा कट गया, भाई दोबारा भेजना, हम प्रोग्राम में शामिल करके लोगों को हंसाने की कोशिश करेंगे, खुद भी हंसेंगे। राजेंद्र सिंह कारड़ा जी, आपने लेख टंडन जी के बारे में लिखा है कि उन्होंने एक ब्यूटीफुल फिल्म बनाई थी आम्रपाली, पर चली नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग फिल्म को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते कि भाई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या लेखक क्या कहना चाहता है, क्या संदेश दे रहा है। ऐसे ही मेरा नाम जोकर फिल्म आई थी, बहुत दिल से जान से बनाई थी राज कपूर साहब ने, चली नहीं। मैं सही बताऊं आपको, लेकिन बाद में बॉबी बनाई तो दौड़ी फिल्म, सारे नुकसान पूरे कर दिए उसने। और हमें संदेश मिला, एजाज भाई आप एक एक गाना बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स फॉर प्लेइंग द सॉन्ग, आपको अच्छा लगा, जो गीत आपको पसंद आए अपने नाम कर लीजिएगा, आप ही के लिए है। और भाई विजय सटन से नैना शाह, नैना जी आप जो गीत सुझाती हैं ना, कभी कभी ढूंढने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आपके सजेशंस बड़े काम के हैं, काम आते हैं। विजय मॉरिशस वाले प्रमोद, पम्मी सिंह स्लव वाले नरेंद्र पांचाल, रानी अर्जुन भाई, जगदीश जी, नीला चौधरी जी, निर्मला जी, सुनीता शर्मा, वत्सला सरस्वती पंडित जी, भाई आप सब लोगों को चिंतन बहुत अच्छा लगा, देशभक्ति के भाव जागे। आपको फिर याद दिला दूं, 22 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं भारत के भारतवंशी लोग, नवनेट सेंटर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग, फ्री फूड, फ्री एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग फ्री बिकॉज इट इज़ योर इवेंट। तो भाई इंडियन हाई कमीशन और इंडियन डायस्पोरा ये कार्यक्रम कर रहे हैं, झंडा लहराया जाएगा, तो नवनेट सेंटर, प्रिंटिंग हाउस लेन, हेज में। वंदे मातरम ये कह रहे हैं आप, और आपने अपना नाम नहीं लिखा जी, आप हैं कंचन अग्निहोत्री जी, मुझे पहचान लेना चाहिए था आपकी लिखाई पर, यह टाइप किया हुआ है। राजीव पटेल, हरविंदर जी थैंक यू वेरी मच, प्रतिभा कहती है चिंतन सुनकर एक बार फिर दिल भराया, यो तो स्कूल में ये कहानी पढ़ी थी किताबों में, भाई पन्ना धाई की कहानी थी आज, क्योंकि आज उदय सिंह राणा का जन्मदिन है, मतलब वो आज के दिन जन्मे थे। पन्ना धाई मशहूर भाई आया, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर के राणा वंश को बचाया। उल्लास टोरंटो में है, सुन रहे हैं सलामत मेडस्टोन में, सलमा सलामत नहीं है सलमा। देखो भाई किसी का नाम अगर गलत बोला जाए तो फौरन 10 पाउंड पे करके ठीक करवा लेना है। एक सूचना भी तो है हमारे पास, और वो ये कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू टीम अप विद भारतीय विद्या भवन फॉर द समर शोकेस 2026 एट हैरो स्कूल। और ये वही हैरो स्कूल है ना जहां कभी जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट थे। एक्सपीरियंस द रिचनेस ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट्स एंड कल्चर इन एन अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक डांस एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस ऑन सैटरडे द 8th ऑफ ऑगस्ट फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम ticketsource.com/bhavan और कॉल 07421497541।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें सुनी आपने। आज किशोरदा की जयंती है भाई, कई गीत आएंगे और अभी तो अगले घंटे में, उससे अगले घंटों में भी भाई किशोर कुमार छाएंगे। लेकिन वैसे तो रोज ही किशोरदा का दिन होता है, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब उनकी आवाज प्रोग्रामों में शामिल नहीं होती। साउथ ओल्ड ट्रेवल याद दिला रहे हैं भाई अपने उस कार्यक्रम के बारे में जो वो ऑफर कर रहे हैं। कार्यक्रम क्या है? साउथ ओल्ड ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। अब तो भाई वो कह रहे हैं कि जरूरी यात्रा हो तभी करें, ऐसा नहीं है। अब तो आप ऑल जो है यात्राएं कर सकते हैं। कॉल साउथ ओल्ड ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है लाइका गोल्ड
0: ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Visit travelhubworld.com.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
1: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
1: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Mega blockbuster Dhurandhar. Mega blockbuster Dhurandhar, 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: हॉन्स्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
8: परंपरा भी
9: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो, TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
10: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. 7 stations. 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
11: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
12: Arliye sahab.

0: किशोर कुमार सिर्फ गायक कलाकार नहीं थे भाई, परफॉर्मर थे। स्टेज पर उनकी हरकतें जो हैं मस्त बना देती थी दर्शकों को। प्रोग्राम की शुरुआत ही कुछ इस तरह से किया करते थे ना, मेरे चाचा चाचियो, मेरे ताऊ ताईयो, मेरे बहनों भाइयो, मैं हूँ आपका किशोर कुमार। वो बाली भाई लेके आएंगे और आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक बात बताएं आपको भाई, आशा जी और किशोर कुमार की जोड़ी ने बहुत सुपरहिट गीत दिए फिल्मी दुनिया में। आज उनकी जयंती है तो बहुत सारे गीत सुनने को मिलेंगे आपको आने वाले कार्यक्रमों में।
1: ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर
0: किशोर की आवाज
1: कोको नूडल्स, tasty healthy flavors perfect for my busy day, available in your nearest convenience store.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a gold.
1: Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Aur Lemfi ki rates hum bata rahe hain, 1 pound ke badle kitne rupaye de rahe hain Lemfi wale, note kijiye. डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज में लैम्फाई गिविंग इन इंडियन करेंसी फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 128.19 रुपीस, पाकिस्तानी 373.41 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 451.46, बांग्लादेशी टके 166.47, अफगानी 88.13 एंड केनियन शिलिंग्स 174.1.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download Lemfi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold Rate. Sone ka bhav. Is samay गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 96 pounds and 96 pence का 1 gram सोना इस समय बिक रहा है।
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
0: धीरे धीरे हम कार्यक्रम के

अपन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भाई एक गीत की फरमाइश हिंदुस्तान से आई है, मधु चोपड़ा ने भिजवाई है। मधु चोपड़ा भाई खुद एक गायक कलाकार हैं, पर कहती हैं कि मेरे भी फेवरेट किशोर कुमार हैं, और उनकी आवाज़ में ये गीत अगर विदेश में बज रहे रेडियो से आए तो भाई दिल झूम जाए। कौन सा गीत? ये वाला।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Be part of a historic grand opening.
3: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
2: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River cruise and a Paris city tour.
3: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
2: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
5: और बहन भाइयों, कार्यक्रम के समापन के समय मुझे याद आ रहा है वो दिन 13 अक्टूबर 1987, जब किशोर कुमार के निधन की खबर आई थी। वो कलाकार जो स्टेज पर धूम मचाता था, जो गाता था, नाचता था, दिल बहलाता था, भाई कॉमेडी करने में जवाब नहीं था। किशोर दा का परफॉर्मर थे जैसा मैंने कहा, लेकिन जाते जाते कितने ही संगीत प्रेमियों को रुला गया वो स्वर जो सबके दिल को भाता था।
6: चलते चलते
5: भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए भाई मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बाली ब्रह्म भट्ट आ रहे हैं, उनके पास तो खजाना है भाई, कलाकारों की जिंदगी के पूरे एनसाइक्लोपीडिया है। वो भी बहुत कुछ बताएंगे और बहुत कुछ सुनवाएंगे। किशोर दा को सलाम कहते हुए रवि शर्मा इज साइनिंग ऑफ। हैव ए सुपर्ब डे। बाय बाय फ्रॉम मी नाउ।

0: ध्यान देखा जाए तो जो गाने मैं आज पेश करने वाला हूँ, आपको जो किशोर कुमार का एक इमेज होता है वो शायद बदल जाएगा, क्योंकि मैंने उनके सोबर गाने चूज किए हैं। कुछ कुछ चटपटे गाने होते हैं क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर ने सिर्फ अगर फास्ट पेस्ड गाने उनको गवाए हों तो मुझे वो ही बजाना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट प्रॉबली मैं आपको सब ऐसे गाने सुनाऊंगा जिससे आपको जाहिर होगा एट द एंड ऑफ द थ्री आवर्स दैट ही वॉज अ सिंगर ऑफ सिंगर्स, नो डाउट अबाउट इट। जैसे मैंने कहा, किशोरदास सिर्फ गाते नहीं थे, वो जिंदगी जीते थे, गाकर जिंदगी जीते थे, और सबसे जुदा, सबसे अलग, सर्व प्रतिभाव। एंड देखा जाए तो संपन्न गीत की दुनिया की यू कैन से शान सर्वेश्री किशोर कुमार साहब। तो मैंने रात को बैठकर कुछ प्लान बनाया और मैंने सोचा कि ए टू जेड जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स इसमें समा जाते हैं जिन्होंने किशोरदा को गवाया, उनका एक बेस्ट चुनिंदा गाना। तो बप्पी दा ने तो मतलब पूछो ना, शराबी के गाने, मतलब चटपटे गाने सब गवाए हैं, लेकिन मैंने ऐसे सोबर गाने चूज किए हैं किशोरदा के जो आपको बहुत रिलैक्स कर देगा इन द थ्री आवर्स दैट आई विल। ही वॉज अ वॉइस ऑफ मैनी बट मेनली राजेश खन्ना, नो डाउट एवरीबडी नोज। लेकिन बप्पीदा ने कॉलेज गर्ल फिल्म थी 1978 की, एक 1960 की कॉलेज गर्ल थी जिसमें शंकर जयकिशन का संगीत था, ये है बप्पीदा का संगीत विच वॉज इंदिवर की लिरिक्स, प्यार मांगा है तुम ही से। एंड देन चित्रगुप्त, बी के बाद सी, चित्रगुप्त छेड़ो ना मेरी जुल्फें, गंगा की लहरें या तो मचलती हुई हवा में, और ये गाना बड़ा कैची है नो डाउट। सी में सी रामचंद्र आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हृदयनाथ मंगेशकर फ्रॉम एच, हुस्नलाल भगतराम एच, के से कल्याण जी आनंद जी, के से खयाम, के से किशोर कुमार हिमसेल्फ जिन्होंने सेल्फ कंपोजिशंस अपने आप के लिए बनाए थे, एल से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एल, एम से मदन मोहन, ओ से ओपी नैयर, आर से आर डी बर्मन, आर से राजेश रोशन, आर से रवि, आर से रविंद्र जैन, एस से एस डी बर्मन, एस से सलील चौधरी, एस से शंकर जयकिशन, एस से सपन चक्रवर्ती, एस से श्यामल मित्रा और यू से उषा खन्ना। ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं आपको गाने सुनाऊंगा, चुने हुए, मेरी सिलेक्शन, उम्मीद है आपको पसंद आए। एंड रादर देन टॉक अबाउट कहाँ जन्मे थे और ही डाइड एट द एज ऑफ 58 इन मुंबई, लेकिन ये सब बातें तो सबको मालूम होती है, हम गाने सुनेंगे। उन्होंने जो दिल जीत लिया दुनिया का, नो डाउट ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स। लेट्स लिसन टू किशोरदा ऑन हिज 97th बर्थडे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.65. 127.65 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली भ्रमबर्ट इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन फूड्स योर ट्रस्टेड नेम फॉर दाल भात पाव भाजी बिरयानी एंड सो मच मोर अवेलेबल नाउ एट योर नियरेस्ट एशियन शॉप्स जैमिन फूड्स द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया
3: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय धुरंधर
4: लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years. Of Ayurvedic legacy available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
6: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 PM. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners, Leica Radio Network.
7: Dad,
8: what's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
9: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
10: Search is changing.
11: Customers aren't just using Google anymore.
10: They're asking AI.
11: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
10: One business, one recommendation.
11: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
10: Will your business be the answer?
11: Or the one that got left behind?
10: The future of search has already started.
11: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
10: Harty Hanks, the digital agency.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. sonatours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2026. Book before the end of August and get up to 400 off. Call Sona Tours now on 0208-951-0111.
6: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
7: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
8: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: गुलशन की बहारों से नजारों से पूछ लो,
1: झुकती हुई नजर से, झुकती हुई नजर से इशारों से पूछ लो।
2: जी हाँ, किशोर कुमार जी की 97th बर्थ एनिवर्सरी। मैंने गाने चुने हैं अल्फाबेटिकली, ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स फ्रॉम ए टू जेड। अब हम एच पे आए हैं एंड द नेक्स्ट विल बी हृदयनाथ मंगेशकर। ये थे हुसनलाल भगतराम।
3: Wake up to Kajalon breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. like a gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 और visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: 0730099-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
2: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
3: South Hall. देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है
4: बीकानेर वाला परंपरा भी
5: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे टेस्टी स्नैक्स मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB कॉल 0779518100
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100, Atoll Protected.
7: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208767-7627
8: साथ

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
1: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: A to Z music directors that have composed for Kishore Kumar. हमने बी से शुरू किया बप्पी लहरी, चित्रगुप्त, सी रामचंद्र, हृदयनाथ मंगेशकर, हुस्नलाल भगतराम और अब है जे पे जिमी सिंह एंड अनयूजुअल सॉन्ग. यूडलिंग भी किया किशोर दा ने. फिल्म है मुकद्दर 1950 की. जे के बाद आता है के, कल्याण जी आनंद जी.
1: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
2: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
4: Deirdre, look. It's the bottomless this time, sliding across their car bonnet.
5: Leave them be, Philip. They just claim confident.
4: Claim confident?
5: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
4: Deirdre? Come back here.
6: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
7: London walo dhyan se sun lo ke furniture ki dhamakedar flash sale aa gayi hai. Shandar Italian aur German design wale bedroom aur dining furniture par bhari chhoot ka fayda uthaiye. Gaddon aur almariyon par zabardast katoti, sabhi divan sets ke sath bilkul muft headboard, sabhi saman tatkal delivery ke liye dastiyab hain. Jaldi kijiye, ye flash sale somvar sham 6 baje khatam ho jayegi. Aaj hi hamare Hero Picklewood aur Slavo ke showrooms mein aaiye ya phir keyfurniture.co.uk पर जाएं. वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel, at all protected.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24-hour लाइन.
14: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg is only £7.99, exclusively at quality food stores.

0: we are presenting Songs of Kishore Kumar by music directors from A to Z. अब K तक पहुंचे हैं, एक कुमारी एक कुमारा. सुनिएगा next.
1: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
0: वो था कल्याण जी आनंद जी का गीत, किशोर कुमार ने गाया, प्रकाश मेहरा ने लिखा था. ये है खयाम, थोड़ी सी बेवफाई.

0: गुस्ताखी माफ। संगीत किशोर कुमार का और लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी की। फिल्म झुमरू। आई एम प्रेजेंटिंग ए टू जेड म्यूजिक डायरेक्टर्स फॉर होम किशोर कुमार सैंग। नेक्स्ट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एल।
1: अक्रॉस लंदन दिस इज बाली ब्रांबाट ऑन लाइक ए गोल्ड।
2: कभी सोचता हूं कि मैं कुछ कहूं।
0: आनंद बख्शी ने लिखा है।
2: कभी सोचता हूं कि मैं चुप रहूं।
0: कल्याण जी आनंद जी फॉर किशोर कुमार।

0: आप सुन रहे हैं किशोर कुमार जी के गाने ऑन हिज 97th बर्थ एनिवर्सरी। मैंने बैठ के बहुत सोचा कि कैसे मैं पेश करूं। अभी मैं ये भी तो बोल सकता था कि इनके अवार्ड्स थे, हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स, 8 अवार्ड्स थे, फिल्म आराधना, अमानुष, डॉन, थोड़ी सी बेवफाई, नमक हलाल, अगर तुम ना होते, शराबी, सागर, ये सब जो गीत थे वो मैं आपको सुना सकता था। लेकिन मैंने चुना कि ए टू जेड जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिन्होंने कंपोज किया किशोरदा के लिए, उसमें से जितने मुनासिब थे मैंने कलेक्ट किए और 22 से 23 नाम जुड़ गए। अभी के फॉर किशोर कुमार भी आ गया, ए से हमने शुरू किया था। अनिल बिश्वास जी भी थे, फिल्म फरेब का म्यूज़िक उन्होंने दिया था और किशोरदा को गवाया था, लेकिन गाने कुछ आई वुडन्ट से देवर दैट ब्राइट, देवर अ बिट घिसे पिटे यू कुन से। सो मैंने बी से बप्पी लहरी से शुरू किया, फिर चित्रगुप्त, सी रामचंद्र, एच फॉर हृदयनाथ मंगेशकर, एच फॉर हुसनलाल भगत राम, फिर जिमी सिंह एंड देन कल्याण जी, आनंद जी, खयाम, किशोर कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अभी आपने जो सुना दैट वॉज फिल्म मजबूर, एंड आनंद बख्शी ने लिरिक्स लिखी थी और वो खूबसूरत फिल्म विद ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन एंड परवीन बाबी उसमें थे। सो आगे बढ़ते हैं, इफ आई टॉक टू मच तो गाना कम हो जाएगा। सो गाने कम हो जाएंगे और सबको मालूम है कि वो खंडवा में जन्मे थे और फिर कब आए वो, किशोर कुमार, अशोक कुमार ने बुलाया उनको फिल्मों के लिए, ये सब कहानी मैं बताऊंगा तो 2-3 गाने कम हो जाएंगे, इसलिए हम गानों पे जोर देते हैं। एंड ऑल द सॉन्ग्स दैट आई हैव चोजन आर सोबर सॉन्ग्स, नॉट लाउड सॉन्ग्स ऑफ किशोरदा, बिकॉज हिज इमेज इज सिंगिंग चटपटे लाउड गाने, योडलिंग वाले गाने। लेकिन यहाँ पे मैंने एक रियल सिंगिंग जो बोलते हैं किशोरदा की, 3 घंटे के बाद आप रियलाइज करोगे व्हाट अ फैंटास्टिक एंड अ ब्यूटीफुल टैलेंटेड सिंगर ही वाज। ही वाज सिंगिंग सैड, ही वाज सिंगिंग हैप्पी, ही वाज सिंगिंग लव सॉन्ग्स, ही वाज सिंगिंग फिलोसॉफिकल सॉन्ग्स, सब जॉनर के गाने उन्होंने गाए थे। आज मैं कुछ अलग ही जॉनर उनका दिखा रहा हूँ, विच इज़ द सोबर सॉन्ग्स ऑफ किशोरदा। नेक्स्ट वन विल बी ऑफकोर्स, हमने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एल पर आ गए, तो उसके बाद एम मदन मोहन, फिर नौशाद। नौशाद जी ने सिर्फ एक ही गाना गवाया उनको लाइफ में, सो ये भी आप सुन लीजिएगा। सुनते जाइए, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com, ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप। सुनिएगा
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Looking at the rates we have of SBI UK, £1 would fetch you 127.65 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 PM. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners like a radio network.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस.
7: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
11: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
10: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
12: Ek aitihasik ane દિવ્ય અવસર પેરિસમાં ભવ્ય BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરના ગ્રાન્ડ ઓપનિંગમાં દર્શનનો લાભ. આ પવિત્ર યાત્રામાં જોડાઓ આપના પરિવાર સાથે, જ્યાં મળશે શાંતિ, ભક્તિ અને આનંદ, અને સાથે આઈફિલ ટાવર, સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂરનો આનંદ માણો. ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બરના. મંત્રા હોલિડેઝ. કોલ કરો 0203-773-6333. મંત્રા હોલિડેઝ. વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા?
13: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
14: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
15: 4 beers, please, garçon!
14: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
16: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
17: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
2: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
3: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली प्रेजेंट्स एन इवनिंग ऑफ एलिगेंस होस्टेड बाय अनीसा नासिर. तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से.
4: शाम चलने लगे दिल मत.
3: विद द लेजेंडरी अनूप जलोटा ऑन संडे 30th ऑगस्ट एट क्वींस थिएटर रॉमफर्ड. डोर्स ओपन 5 PM, शो स्टार्ट्स 6 PM, टिकट स्टार्ट्स फ्रॉम £40. बुक नाउ एट queens-theatre.co.uk. रेडियो पार्टनर्स लाइक अवर रेडियो नेटवर्क.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
6: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
7: Ilford, ab asli Indian flavors ka maza lijiye.
8: परंपरा भी,
9: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, एल्फर्ड, IG26HA. कॉल 07555-6015.
10: खतरों के खिलाड़ी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी, पावर्ड बाय स्टार टूर्स, एसोसिएट स्पॉन्सर लाइन क्रॉफ्ट.
11: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
13: OP Nayyar.
14: श्री गुस्ताखी माफ, मैं ये गाना एंड में आपको सुनाने वाला था लेकिन मैंने अभी सुना दिया. क्यों? क्योंकि रफ़ी साहब और किशोरदा बड़े अच्छे दोस्त थे और रफ़ी साहब वॉज अ बिग फैन ऑफ GM दुरानी. तो बीच में ये गाना आया तो मैंने सोचा कि शैल आई प्ले दिस सॉन्ग और शैल आई प्ले अनदर सॉन्ग. तो ओ पी नैयर, अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो ओ पी नैयर का जो ही हैड गॉट किशोरदा टू सिंग फॉर आई थिंक अबाउट 38 songs. सो आगे जाते हुए मैं उनका गाना ज़रूर मैं पेश करूँगा लेकिन ये गाना एंड में होगा. और अब जो गाना आ रहा है, दिस इज़ फ्रॉम फिल्म बंदे हाथ, दैट्स RD Barman. We are into A to Z. So, abhi R pe aate hain. RD Barman. Suniyega.

0: आरडी बर्मन टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Across London. This is Bali Brambat on Leica Gold.
1: And this is OP Nayyar for Kishore Kumar. Kishore Kumar with Asha Bhosle. 38 songs gawaye the OP Nayyar ne. Ye baap re baap ka.

0: इस गाने में एक गलती हो गई थी, आशा भोसले जी और किशोर दा स्टूडियो में गा रहे थे और वहाँ पे आशा भोसले जी ने गलत टाइम पे आ ऐसे एंट्री मारी और किशोर दा ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया, फिर कहा कि मैं ही हीरो हूँ, मैं हीरोइन को ऐसे ही करूँगा। तो घोड़ा गाड़ी चल रही थी और चांद उस्मानी उनके साथ थी, तो उस उनके मुँह पर रख दिया उसी टाइम पे। सो दैट वॉज ओपी नैयर फॉर किशोर कुमार। नेक्स्ट इज
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3449, Indian rupees 127.78, Pakistani rupees 373.31, Afghan Afghanis 88.17, Kenyan shillings 173.98 and Mauritian rupees 63.25.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £97.80 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetables.

दिल्ली का ठग एंड म्यूजिक डायरेक्टर रवि. सो आर पे पहुंचे, नेक्स्ट एस पे एस डी बर्मन. लास्ट सॉन्ग कंपोज्ड फॉर किशोर कुमार.

0: We are listening to music directors from A to Z, the real singing by Kishore Da, with all the music directors from A to Z. अभी आपने गुंगुरु की तरह रविंद्र जैन को सुना. अब नेक्स्ट आएगा सलील चौधरी.
1: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

0: आज मैंने जो गाने आपके सामने आपके समक्ष रखे हैं वो सब ऑल द वंडरफुल चैलेंजिंग एंड सोबर सॉन्ग्स ऑफ किशोरदा, लेकिन ये गाना जो है सलील चौधरी जी के कॉम्पोजिशंस वर सो डिफिकल्ट द वे ही यूज टू कंपोज देम। ये गाना इतना चैलेंजिंग था क्योंकि इसके अंदर स्केल चेंजेस आते हैं। अगर आप वापस कभी भी सुने तो आपको पता चलेगा कि सलील दा यूज टू कीप ऑन चेंजिंग स्केल्स इन बिटवीन द पर्टिकुलर सॉन्ग दैट किशोर दा वाज सिंगिंग। तो इनको इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा किशोर दा को। ही डिड 18 takes. मैं ये नहीं कह रहा कि किशोर दा ही ओनली वॉज द सिंगर हु कुड हैव टेकन दैट लॉन्ग, बट एनी सिंगर हु सैंग टू दिस कॉम्पोजिशन वुड हैव टेकन लॉन्गर देन नॉर्मल। फिल्म थी अन्नदाता 1972 की और लिरिक्स थी योगेश की और सलील चौधरी जी ने कंपोज किया था ये गाना। हम ए टू जेड म्यूजिक डायरेक्टर्स के गाने सुना रहे हैं हु कंपोज्ड फॉर किशोरदा और सारे सोबर गाने हैं। नेक्स्ट हमारे आर्टिस्ट होंगे, आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज बिश्वजीत, जिनके लिए किशोरदा ने गाया था, लेकिन एक चटपटा गाना है ये एंड दैट इज मैं सुंदर हूँ फिल्म का, आशा भोसले जी के साथ किशोरदा ने गाया था, वो भी हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक बिश्वजीत के लिए। उनकी नॉर्मल वॉइस तो हमेशा रफ़ी साहब होती थी लेकिन कुछ गाने किशोरदा ने भी गाए थे तो वो मैं सुनाऊंगा नेक्स्ट। एंड उसके बाद हम जाएंगे फॉर दी क्या बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो शंकर जयकिशन आएंगे, शंकर जयकिशन इन जाने अनजाने, और उसके बाद शंकर जयकिशन के बाद सपन चक्रवर्ती, फिर श्यामल मित्रा एंड देन आखिर में उषा खन्ना। सो लेट्स रश इनटू इट या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सोबर सॉन्ग्स, वंडरफुल सॉन्ग्स, 97th डेथ एंड बर्थ एनिवर्सरी, बेग योर पार्डन, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किशोर कुमार।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara najikna Asian shops ma.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
8: ड्रीमिंग ऑफ पैराडाइज, डिस्कवर The Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
9: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
8: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
9: At all protected.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: London. Jazz Entertainment presents Bollywood legend live in London. Bollywood actor Aftab Shivdasani. Playback singer Amantrika. और सोलफुल सिंगर मयूरी पटालिया लाइव हैरो में सैटरडे 3 अक्टूबर 7 PM हैरो आर्ट सेंटर. टिकट्स अभी बुक कीजिए हैरो आर्ट सेंटर बॉक्स ऑफिस से. मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल 0777-161-5800. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
2: खाकरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट. ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स. खाकरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर.
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
4: Be part of a historic grand opening.
0: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
4: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
0: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
4: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: मीनार ज्वेलर्स. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
6: कैरेटिनो बटर घी द हेल्थियर लो प्राइस कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर घी ऑल्टरनेटिव. कैरेटिनो बटर घी अवेलेबल इन टेस्कोस आस्डा मॉरिसन्स एंड लोकल ग्रोसरी stores. Caratino Better Ghee.
7: Laika Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold. Aur online suno laikagold.com pe.
8: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: book now. Visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
4: कॉन्सलो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
5: बीकानेर वाला परंपरा भी,
6: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो, TW3 1QT. कॉल करे 07487-687-885.
1: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142. Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of August and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
7: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सैंडी शाह जी के साथ बात कर रहा हूँ एंड बिलीव यू मी यू आर गोना हैव द बेस्ट ट्रीट ऑफ योर लाइफ इन द नेक्स्ट 3 hours. What he has done for Kishore Kumar choices is elite. It's so beautiful. अभी next दो दोस्त रफी साहब और किशोर दा दोनों को एक एक दूसरे से इतना प्रेम था और रिस्पेक्ट था. लोग बोलते कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं था. देखो दोनों की जुगलबंदी एट द एंड. बाली ब्रह्मभट्ट का नमस्कार.
1: चल शुरू हो जा.

0: बस बस बस सांपे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है?
2: गा।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो माँ
0: चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: South Hall, Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
2: Bikaner wala parampara bhi.
3: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB. कॉल 07795181001.
4: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
5: मीनार ज्वेलर्स. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02087677627.
6: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
7: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Drive with Sandy Shah. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: They are indeed, and Southall Travel is pleased to announce that the SCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Why don't you give them a call for the most competitive Dubai deals on 0208 574 841. And don't forget, they are at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Yeah, like a gold.
3: Like a gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट TravelHubWorld.com.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retailers. Stores across the UK.
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर
9: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स.
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
12: मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर.
13: नाम क्या है?
12: Mega blockbuster Durandar, 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
14: Oh yeah.
0: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
15: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे Leica Gold Radio London and Greater Manchester in the evening show with Ashwini. Features बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kachha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
5: गारंटेड.
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410.
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410.

0: 0 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs अप्लाई।

0: इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
1: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली प्रेजेंट्स एन इवनिंग ऑफ एलिगेंस होस्टेड बाय अनीसा नासिर। तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से।
2: शाम चलने लगे।
1: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
3: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 PM. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners like a radio network.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: हॉन्स्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
5: परंपरा भी
6: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
7: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर 14 डेज टू जापान एंड साउथ कोरिया फॉर चेरी ब्लॉसम्स इन मार्च एंड अप्रैल 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड गेट अप टू 400 ऑफ और लूज द डिस्काउंट आफ्टर। कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 0208-951-0111।
8: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Mamster Golgappe ate Golgappiyan da paani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 लाइन।
3: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 0192322727274। बुक योर टेबल।
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर, पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना, मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
5: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
6: Gold Drive.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी एंड आप और हम सब मिलके वी ऑल हैव सेड येपी, आज होगी किशोर कुमार नाइट। 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार जी के गीत, यानी कि वॉल्यूम अप रखिए। एंड आई थिंक जो हम फैंटास्टिक फ्राइडे मनाते हैं जहां आरजे अश्विनी बन जाती है डीजे अश्विनी, ऐसे कुछ माहौल आज भी होने वाला, बिकॉज किशोर जी के गीत हैं भाई, तो फिर मतलब कैलोरीज बर्न होनी है ना। खाना वाना फटाफट खा लो। देखो मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि 3 घंटे जिस तरीके से आपके पैर थिरकने वाले ना, आप कहेंगे आहा ओहो उफ क्या गीत है। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सारे के सारे प्यारे प्यारे हमारे लिसनर्स अपनी अटेंडेंस दर्ज करवा रहे हैं। पूछें आप सबसे कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना। आई नो एवरीबडी इज सो एक्साइटेड कि मैं क्या प्लेलिस्ट लेके आई हूँ। बिल्कुल आप सभी ये प्लेलिस्ट एंजॉय करेंगे। और मेरा और सैंडी का बैंटर आपने सुना ना, आई सो विश कि यहाँ पे ना कैमरा होना चाहिए कि हम दोनों की इंटरेक्शन बिहाइंड द माइक जो चलती है ना, और जो मिसकंसेप्शन है कि सैंडी को मैं केवल एक शब्द में उत्तर देती हूँ, हाँ बिल्कुल भी नहीं। आई सो विश कि यहाँ पे हमारी मस्ती की जो क्लिप्स है ना वो आनी चाहिए कि मैं कितना उनको परेशान कर देती हूँ। एंड उनकी वो आंखें यहाँ से वहाँ जब रोल होती है ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, उनको छेड़ने में बड़ा मज़ा आता है। आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ व्हेन यू हैव अंडरस्टैंडिंग सीनियर्स हु हैपन टू बी योर गुरु एंड फ्रेंड एंड दे गाइड यू कि आप कितनी अच्छी तरीके से आप अपने अपने काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें आज के शो में होने वाली, हमेशा की तरह एक लाइफ थ्योरी लेके आई हूँ। किशोर कुमार जी के गीत मैं प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हूँ, तो पहले ही माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों की रिक्वेस्ट ले ना पाऊँगी, लेकिन फिर भी अपने अपने फेवरेट किशोर कुमार जी के गीत है जो है आप मुझे लिख के भेजिए, देखिए आपकी और मेरी चॉइस कितनी मिलती है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपी एंड 85 पैसे। Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: This is Ash Winnie on Like a Gold. This part of the show is brought to you by Durandar.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
0: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
2: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
3: Are we there yet?
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simsy before we left London.
4: Simsy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208767 7627।
5: लाइका गोल्ड, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो lykagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बारात।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: आज कंप्लीटली ट्रीट चल रही है किशोर कुमार फैंस के लिए जिसमें मेरा नंबर भी आता है एंड आई एम थरली एंजॉइंग द प्लेलिस्ट। वॉल्यूम आप सोचिए कि यहाँ पे स्टूडियो में तो कोई है ही नहीं मुझे बोलने वाला कि वॉल्यूम कम करो, कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं है, मेरी पड़ोसन भी जो है वो भी रेडियो वाली है तो वो भी मुझे कुछ बोलने वाली नहीं है। ओके, मिला लेते हैं घड़ियाँ, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 7:29 और इस टाइम पर आप सभी को कोई ना कोई लाइफ थ्योरी मैं ज़रूर बताती हूँ। आज की लाइफ थ्योरी द रेन थ्योरी। अब बारिश जब भी होती है पूरे विश्व में, पूरे जहाँ में, वो कोई अपना एक स्थान निर्धारित नहीं करती। वो गांव, गली, कूचे, शहर, जंगल, नदियाँ, ओशंस, बस यू नेम इट, हर जगह बारिश आ जाती है। बादल गरजते हैं और वो पूरा पानी बरस जाता है। अब जब ये पानी बरसता है तो जैसे मैंने कहा कि कोई चूज़ नहीं करता ना बारिश कि नहीं आज तो मैं सिर्फ अमीरों के यहाँ पे गिरूँगी, आज सिर्फ गरीबों पे बारिश होगी। बारिश इक्वली सबको ट्रीट करती है और बारिश के साथ हम सब की यादें भी वैसी हैं। बचपन में कागज़ की नाव बना के उस पानी में हमने छोड़ दी थी। स्कूल से आते समय अगर बारिश मिल गई तो छपक छपक पानी में कूदते हुए हम सब अपने घर पहुँचे। ड्रेस गीला हो गया, शूज़ में पानी भर गया, सॉक्स गीले हो गए, आहा, वी डोंट केयर, हमने उसे एंजॉय किया। और किसी के लिए ये बारिश जो है ये बुरी बन गई। अब इन सब का हमारी ज़िंदगी से क्या लेने देना। तो बता, देखो बारिश तो इक्वली सब जगह आ रही थी लेकिन हर किसी का अनुभव उस बारिश के साथ में अलग था। बच्चों के लिए मस्ती मज़ा था, यंग लोगों के लिए रोमांस था, मिडिल एज वालों के लिए आहा आ गई बारिश, और जो बूढ़े लोग थे उनके लिए वो सुनहरी यादें वापस आई। तो इसमें हुआ ये कि बारिश अगेन इक्वली पड़ी थी सब जगह लेकिन सबके अनुभव अलग थे। अब रास्ते पे जो इंसान सब्जियां लेके बैठा था या फ्रूट्स लेके बैठा था उसका सारा नुकसान हो गया। और कुछ लोगों के लिए ये बारिश बहुत ज़रूरी थी खेत में, खलिहान में। ज़िंदगी भी इस बारिश की तरह होती है, हम सब पे बरसती है। तो ये बरसना मतलब हमारा डाउनफॉल। जब जब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आते हैं और बहुत सारी पीड़ा आती है तो हम सोचते हैं कि मैं ही क्यों भगवान, मैंने क्या ही किया था, मैंने तो आज तक किसी को तकलीफ़ नहीं दी। हम ये नहीं समझते कि भगवान, यूनिवर्स, ऊपर वाला हमें क्या सिखाना चाहता है। देखिए ज़िंदगी में जब भी डाउनफॉल है ना, जब भी बुरा पीरियड चल रहा है, बिल्कुल अपने आप को ना कोसे, ऊपर वाले को ना कोसे, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। ओवर द टाइम शायद सिखाने की कोशिश की लेकिन आप सीख नहीं रहे, आप शायद कोई पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए ऊपर वाला बार बार वो लेसन्स आपको दे रहा है। दुख दर्द पीड़ा में समझ लीजिए ये क्या है और उसमें से ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि देखिए जब कोयले में से हीरा निकलता है तो वो हीरा बन के थोड़ी निकलता है ना, उसके तो कितना ठोक पीट के उस कोयले से वो हीरे को जब तराशा जाता है तब कहीं जाके वो चमकता है। जितना तराशा जाओगे उतना आप चमकोगे, बस यही वाला चीज़ है ना, अपने जहन में रखिए। मैं क्यों के बजाय थैंक यू, मैं ही हूँ एंड मैं इसे फेस करूँगा या फेस करूँगी, बस ये अगर चीज़ आपने अपने साथ में समझ ली, रख ली, गार्ड बांध ली तो रेन थ्योरी को आप कहोगे धन्यवाद। तो क्या रेन थ्योरी आपकी भी लाइफ में चल रही है? मुझे मत बताइए आप इसमें से क्या सीख रहे हैं। अपने आप के लिए आप वो लेसन ज़रूर समझ लीजिए। कैसी लगी आज की लाइफ थ्योरी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट ट्रैक के लिए थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो, डांस करना चाहते हैं कर लो।
1: ये है लाइका गोल्ड द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: updates for London at Breakfast and Drive.
1: इतने सारे मैसेजेस चल रहे हैं, बैक टू बैक सभी मैसेजेस कर रहे हैं और सभी हंसते गाते हुए कह रहे हैं कि क्या बात है यार, आज तो मतलब मजा आ गया। प्लेलिस्ट जो अपलोड हुई है ना, वो फैंटास्टिक है। मैंने आप सबसे पूछा है कि आप अपनी अपनी पसंद के गीत मुझे ज़रूर बताइए। अपोलॉजीज़ कि मैं आप लोगों की लिस्ट प्ले ना कर सकूँ क्योंकि यहाँ पे प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है, लेकिन ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपके फेवरेट गीत कौन से हैं। अरे बिल्कुल, इतना शेयरिंग तो बनता ही है। अच्छा, किशोर कुमार जी के साथ और एक गहरा नाता हमारा कैसे हो सकता है? सो आई एम बॉर्न इन इंदौर, मध्य प्रदेश। किशोर जी इज़ फ्रॉम खंडवा। तो मध्य प्रदेश वाले, ऑल मध्य प्रदेश वाले, गिव मी अ शाउट दे। यस, जहाँ से भी आप मध्य प्रदेश से, आज वही हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि हमारे किशोर दा जो है, उन्होंने इतने बेहतरीन गीत दिए हैं एंड सारे हम लोग उनके पीछे इतने दीवाने हैं। और होता है ना कई बार कि अब जिनका नाम किशोर है, मतलब इन जनरल लाइफ में हमारा नाम अगर किसी वेल नोन व्यक्तिमत्व के साथ में मिलता है तो हमें अपने अलग ही, मतलब ना, अपनी हवाबाजी दिखाते हैं हम, अलग ही अपना एक टशन दिखाते हैं हम, अलग ही एक प्राउडनेस जो होता है ना उसमें, कि आई फील प्राउड ऑफ दिस कि मेरा नाम भी देखो उनके जैसा है ना। सो ये वाली एक चीज़ भी जो है, सो फील गुड फैक्टर है। नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुनाने वाली हूँ, दीवार फिल्म से है। वॉल्यूम अप रखिए एंड कीप ऑन सेंडिंग योर फेवरेट ट्रैक्स। देखते हैं आपकी और मेरी चॉइस मिल रही है क्या, जो प्लेलिस्ट यहाँ पे लगी है।
0: दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड, travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 p.m. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners like a radio network.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: Two businesses,
6: same town,
5: same service.
6: One appears on page one of Google,
5: the other doesn't.
6: Guess which one gets the customer?
5: The truth is brutal.
6: The first page of Google gets the business.
5: Everyone else gets what's left.
6: So here's the real question.
5: When your customers search for what you sell, do they find you?
6: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
8: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
9: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
10: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
11: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg, only £7.99. Exclusively at quality food stores.
12: Mega blockbuster Dhurandhar.
10: Mega Blockbuster Dhurandhar, 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
12: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: Cool music
12: for a super hot summertime.
10: On Leica Gold.
12: Ashwini, brightening up your weeknights.
13: कह दूं तुम्हें
14: हाँ
13: या चुप रहूं
14: ना
13: दिल में मेरे आज क्या है
14: क्या है

0: Like our gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127.96 इंडियन रुपी, 373.48 पाकिस्तानी रुपी, 451.22 श्रीलंकन रुपी, 166.37 बंगलादेशी टाका, 88 अफगान अफगानी, 173.95 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर्स, 62.8 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £97.69.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 52 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. लास्ट ट्रैक, वॉल्यूम अप रखना चाहते हैं जरूर रखिएगा. झुमरू फिल्म से मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुमरू. भाई वादा किया आप सबसे कि बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको सुनने मिलने वाली है. तो जो भरोसा आप मुझ पे करते हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मेरे नाजुक कंधों पे. अब मैं क्या करूँ. एंड लाइव थियरी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, नहीं हो जाएगी. रेडियो वाली अश्विनी, ये मेरा इंस्टाग्राम है, जरूर वहाँ पे चेक कर लीजिएगा.
0: दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
6: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश.

0: देखो ना, अब ये जो गीत हमने लगाया चलिया तू चलिया, तो जितने लोग अभी तक हमारे प्यारे लिसनर सारे धुरंधर जो ऐड नहीं हुए थे, सबके सब आ रहे हैं और अपनी अपनी हाजिरी अभी भी लगवा रहे हैं। और कुछ तो मेरे साइलेंट लिसनर्स, ओ माय गॉड, मतलब ऐसे कुछ तो स्पेशल शोज और करने पड़ेंगे ताकि मेरे साइलेंट लिसनर्स जो हैं, हाँ जी भाई साहब आप, हाँ जी दीदी आप, कितना खुश हो कि आपने आज कैसे फटाफट मैसेज किया। भाई हमारी ना एक बहुत बड़ी स्क्रीन है यहाँ पे, है ना, हमारे स्टूडियो में ये बड़ी सी स्क्रीन जो है इस पे होता है व्हाट्सएप। तो आप जो बड़े बड़े अक्षरों में लिख के हमें भेजते हैं यहाँ पे, हमें बड़े सुंदर लगते हैं, तो ज़रूर अपने फीडबैक देते रहिए एंड एन्जॉय करते चलिए, क्योंकि कोशिश यही है कि आपका मनोरंजन हो, आप मुस्कुराएं अपनी प्यारी प्यारी यादों को याद करके, और हमें बताएं कि किस गीत का आपके लाइफ में कितना पार्टिसिपेशन रहा है। मेरे सपनों की रानी स्पेशली ये वाला जो गीत है इससे लेके तो आई एम श्योर 70s में जो बच्चे रहे होंगे, जो बड़े बन रहे होंगे, उनके लाइफ में इसका एक अलग ही इम्पैक्ट रहा होगा, है ना। नेक्स्ट ट्रैक जो है मस्ती भरा गीत है, थोड़ा वॉल्यूम अप रखना चाहते हैं ज़रूर रखिए। सेकेंड आवर, दिस इज़ द सेकेंड आवर, वेलकम, एंड हमारा म्यूजिकल जर्नी यहाँ पे चल रहा है, कुछ अलग सी बातें भी यहाँ पे होने वाली, इंटरेक्शन आपका हमारा चल रहा है। एंड When I said about Madhya Pradesh, तो there are so many people from Madhya Pradesh saying, ये अश्विनी हम भी मध्य प्रदेश से हैं। देखो ना हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं ना, किसी का ननिहाल है, किसी के पापा वहाँ से, कोई वहाँ पे बड़ा हुआ है, कोई एजुकेशन के लिए गया है, इसीलिए रेडियो सुना करो, द इवनिंग शो विद अश्विनी मंडे से फ्राइडे 7 to 10 सुनते चलिए।
1: London's biggest classics all day. This is Like a Gold. With competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीस एंड 85 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनों, अरे मक्कन भाई, छक्कन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा, ओ धोंडीबा, आई का, ओए कर्नल सिंह, अरे तुझे भी सुनो पापे।

0: क्या बात है, ये जबर ये लाजुनो को दैट्स व्हाट इज। आइए जी पास आइए, क्यों घबरा रहे हैं। लव दिस मस्ती भरा गीत किशोर कुमार की आवाज में, कहानी किस्मत की। ये गीत हमने आपको सुनाया एंड मस्ती तो ध्यान में आ गई। किशोर कुमार के बारे में भाई ऐसा है कि मैं अब छोटा मूँ बड़ी बात कुछ भी नहीं कह सकती, बस मैं नमन कर सकती हूँ कि इतने वर्सटाइल सिंगर हमें मिले। हम लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हैज़ बीन अ ब्लेस्ड इंडस्ट्री कि उनके गीत हमें सुनने मिले, जो वैरायटी हमारे सारे सिंगर्स हमें देते हैं, ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है बताइए। संगीत से जैसे आप और हम जुड़े हैं और जितना इम्पैक्ट संगीत का हमारे ऊपर होता है, खूबसूरत है। एंड वी आर लकी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी लिसनर अराउंड द ग्लोब जो ये शो आप सुन रहे हैं, क्योंकि बताएं आप लोग ना काफ़ी प्यारे मन वाले इंसान हैं। मुझे लगता नहीं कि आप ना दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग होंगे, क्योंकि संगीत जो है ना आपको नेगेटिविटी की तरफ जाने ही नहीं देता। सो सारे के सारे पॉजिटिव प्यारे इंसानों को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस तो मैंने बोल दिया, और इसीलिए मैंने कहा कि आज होगी ट्रीट किशोर कुमार के गीतों की। नेक्स्ट ट्रैक आई है वन ऑफ माई फेवरेट, 80s वाले बच्चे तैयार हैं, सनम तेरी कसम से। मस्ती भी चल रही है, थोड़े मध्यम वाले गीत भी सुना रहे हैं, योडलिंग वाला गीत आपको सुना दिया है, लिस्ट यू विल लव इट। एंड इसके बाद में बात करेंगे जोधपुर के एक बड़ा कॉम्पिटिशन के बारे में। बड़ा इज़ नॉट इन साइज़ बड़ा, इट इज़ साइज में भी बड़ा, लेकिन खाने वाला बड़ा होता है ना, मिर्ची बड़ा, उसके बारे में बात करेंगे।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. And when we say everyone, we mean your dad, Dan, Danielle, Dean, Dave, Dale, Dell's delivery driver Denise, Denise's dentist Dinesh, and Devon's strongest man, Donathan. Donathan? Donathan, that can't be right. Donathan? Well, whatever your name is, if you're a real person, investing is for you too. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.
3: Like a Gold.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
8: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and likeagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: अच्छा, अगर ये सुनते सुनते आपके सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाना तो फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बिकॉज ये न्यूज़ ही ऐसी है कि मैं खुद यहाँ पे इस न्यूज़ को पढ़ते पढ़ते आई वाज लाइक कितना मजा आया होगा, मतलब सो जोधपुर में मिर्ची बड़ा, इसका क्रेज सभी जानते हैं। तो 63,000 मिर्ची बड़ास बनाए गए थे जिसे 5 घंटे में मात्र केवल 40 लोगों ने खत्म किया। और 40 लोगों ने ये 31 केजी का एक जायंट मिर्ची बड़ा बनाया था। वो भी आने दो, बस खाना शुरू उन सब का। तो ये जो आइकॉनिक सिटी है, यहाँ पे मिर्ची बड़ा फेस्टिवल हमेशा होता है। अराउंड 63,000 मिर्ची बड़ा वो प्रिपेयर्ड एंड 5 घंटे में सारे के सारे पेट में पहुँच गए। द बिगेस्ट अट्रैक्शन वॉज 31 केजी जायंट मिर्ची बड़ा एंड सक्सेसफुली इट वॉज टैकल्ड बाई 40 पार्टिसिपेंट्स। क्या ही इन्होंने किया होगा यार बाद में इतना बड़ा। और सारे स्पेक्टेटर्स थे, दे वर लाइक 40 लोगों ने 31 केजी का बड़ा दे दनादन आने तो खा लिया। द इवेंट सेलिब्रेटेड जोधपुर रिच स्ट्रीट फूड कल्चर एंड शोकेस द सिटीज अनमैच लव फॉर फूड। हर एक शहर की अपनी स्पेशलिटी रहती है और साथ में वो स्पेशलिटी जो लोकली वहाँ रहते हैं वहाँ पे उन्हें पता चलता है। Now Indore is my Naniyal and I was brought up in a small town. I'm a small town girl called Akola in Maharashtra. हमारे अकोला की पानी पूरी वर्ल्ड बेस्ट है। ओके, अभी अकोला वाले जो भी मुझे सुन रहे हैं फटाफट गिव मी अ शाउट। उसके जैसी पानी पूरी कहीं नहीं हो सकती। मतलब मुझे लगता है कि एक्चुअली ना जो लोग कहते हैं कि हमारे शहर की पानी पूरी अच्छी, हम मतलब अभी जस्ट रेस्ट आ केस, क्योंकि हमारी पानी पूरी वहाँ पे जो है बेस्ट है। चलिए, बहुत सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो चुके हैं, तो अब ऐसा करते हैं कि जब खाना पीना बहुत हो जाता है तो पान खाया जाता है, तो बनारस का पान खिलाएं आप सबको। वॉल्यूम अप रखिए, दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
0: फील गुड हिट्स इन द सन विद लाइका गोल्ड।
2: ये है
4: लाइका गोल्ड।
5: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
6: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा,

0: क्या बात है, कितना डांस हो गया भाई। डॉन विच वॉज रिलीज इन 1978, उस फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़, मतलब मैं आज कह नहीं रही हूँ किशोर कुमार की आवाज़, क्योंकि हम जानते हैं किशोर कुमार की आवाज़ वाला ही ये पूरा 3 घंटे का शो चल रहा है। अच्छा भाई, मराठी लिसनर्स, आई हैव इंटरव्यूड रेणुका शहाने, उनकी एक मराठी वेब सीरीज़ के साथ में आ रही है अग आई अहो आई, एंड मैंने रेणुका शहाने जी को इंटरव्यू किया था, तो द फैन इन मी वॉज डेफिनेटली एक्साइटेड। लाइका एक्स्ट्रा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर ज़रूर जाके देखिएगा, एंड यू विल डेफिनेटली लव टू सी रेणुका शहाने का मिलियन डॉलर स्माइल। एंड ये सफ़र जो है भाई, हिंदी वाला सफ़र, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं म्यूजिकल जर्नी, इंग्लिश वाला तो हो ही नहीं सकता अभी, क्योंकि जिस तरीके से गीत लाइंड अप है ना, यू विल से आह ओह उफ। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट्स एपिसोड नंबर 27 ऑनर बेस्ड अब्यूज, ये आ चुका है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दीपराज एंड खुश ने इसे होस्ट किया है। एन इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन रूटेड इन ट्रूथ करेज एंड द चेंज दैट इज नीडेड, जरूर देखिएगा, काफ़ी इंटेंस है ये एपिसोड। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड।
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद ले। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 03963-5757. Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
6: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
8: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at likearadio.com and the Like a Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: that whistle at the end. Ooh, loved it. Kati Padang, which was released in 1971, उस फिल्म से सुनाया आप सबको ये गीत. तो चाय पे चर्चा. आई एम श्योर हर कोई अपने घर में चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, मतलब जो भी पेय आप लेते हैं जिससे आप हाई नहीं होते, वो जो पेय होता है, वो जो ड्रिंक होता है, उसकी अपनी एक बात होती है. तो चाय पे जब हम मिलते हैं अपनों से और जब हम गपियाते हैं तो ना जाने कितने रैंडम टॉपिक्स निकल के आते हैं. पर ऐसा नहीं होता है कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें. मतलब चाय एक तो बनी, उसमें से चाय किसी के यहाँ पे जाके पियो और तब जो एक अपनापन लगता है वो एक अलग सी फीलिंग है. आई हैव माई चाय बडीज ओवर द ईयर्स जिनके साथ में, और कुछ नहीं, हम हाई हेलो गुड मॉर्निंग गुड बाय गुड नाइट नहीं, मतलब चाय के ऊपर कोई हमें शायरी मिल जाए, चाय के ऊपर और कुछ मतलब कविता मिल जाए तो हम एक दूसरे को भेज रहते हैं. तो ऐसा कुछ ऐसा आपके साथ में है कि कोई खाने का फेवरेट आइटम वो अगर आपको कहीं दिख जाए तो उसके पिक्चर्स आप एक दूसरे को भेजते हैं, दैट इज़ योर बडी लैंग्वेज, लव लैंग्वेज फॉर योर फ्रेंड, रिलेटिव, एक्सटेंडेड फैमिलीज, जो भी है. रिसेंटली लोगों ने दोस्ती वाला दिन मनाया, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया. तो आपने अपना फ्रेंडशिप डे कैसा सेलिब्रेट किया? कुछ यार हमारी ज़िंदगी में बचपन से होते हैं, कुछ कॉलेज से, कुछ जवानी में, कुछ मिडिल एज में और कुछ बुढ़ापे में, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत अपने होते हैं लेकिन छूट जाते हैं. तो कभी तो उनके साथ में चाय पी होगी और कभी उनके साथ में हसीन पल बिताए होंगे. तो दोस्ती वाला दिन अभी ताज़ा ताज़ा बीता है, किसी से अगर बात नहीं की है बहुत सालों से तो कल सुबह उठ के फ़ोन कर लेना. लोकल है तो ऐसे भी आज रात हो गई, अभी मत लगाना, फिर बोलोगे कि अश्विनी तुमने बताया था. रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, उसको एंजॉय करते चलिए जैसे आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे अपने म्यूजिक को यहीं पे.
1: ये है Like a Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127.92 इंडियन रुपी, 373.67 पाकिस्तानी रुपी, 451.5 श्रीलंकन रुपी, 166.45 बांग्लादेशी टाका, 88.17 अफगान अफगानी, 174.07 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर्स, 62.89 मॉरिशियन रुपी.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £97.69 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 45 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. इस आवर के आखिरी दो गीत आपके लिए चला जाता हूं एंड लास्ट वन इज आते जाते खूबसूरत. वॉल्यूम अप रखिए, दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी.
1: लंदन्स बिगेस्ट क्लासिक्स ऑल डे, लाइका गोल्ड.

0: आइए आइए, थर्ड एंड आखिरी आवर ऑफ किशोर कुमार नाइट। लग रहा है ना कि किसी से म्यूजिकल कॉन्सर्ट में बैठे हैं, वो वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाते हैं वहाँ पे ऐसा ही माहौल होता है, बैक टू बैक गीत। सत्य पे सत्ता, नमक हलाल से सुनाए आप सभी को ये गीत। अगला गीत, अब जिनकी भी सागर जैसी आँखें हैं ना, तो समझ लेना ये आपके लिए है।
1: Brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीस एंड 85 पैसे। Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ। टाइम का पता ही नहीं चल रहा ना, थर्ड आवर का मतलब नियरली अभी हाफ एन आवर तो नियरली खत्म हो गया। सो इट्स 21:21 है ना, एंजेलिक नंबर ऑन माय घड़ी। 9:21 हो चले हैं। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। टेरिफिक ट्यूसडे, आज तो पूरा टेरिफिक रहा ना शो, एकदम मजा आ रहा है बिल्कुल। जितने अभी और भी गीत लाइंड अप है ना, वो भी सब आप इंजॉय करने वाले हैं। आप डिसअपॉइंट तो होंगे ही नहीं, किशोर कुमार की नाइट यहाँ चल रही है तो अमेजिंग गीत आते रहेंगे। आज किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी होगी, किसी की नौकरी लगी होगी, किसी की नौकरी का आखिरी दिन होगा, किसी के लिए नॉर्मल दिन होगा, लेकिन आज और भी कुछ मनाया जाता है। तो आज मनाया जाता है नेशनल नाइट आउट, नेशनल वाइट वाइन डे, सिंगल वर्किंग वुमेंस डे, इंटरनेशनल आउल अवेयरनेस डे, हुर्रे फॉर किड्स डे, असिस्टेंट डॉग डे, इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे एंड साथ में मनाया जाता है नेशनल चॉकलेट चिप कुकी डे। अब जितने भी कुकी के दीवाने हैं, आज ऑब्वियसली अब मैं आपको रात में ये चीज़ बता रही हूँ कि आज मनाया जाता है नेशनल चॉकलेट चिप कुकी डे। अगर आप इसके दीवाने हैं तो कल सुबह बना लीजिएगा या बाहर से लेके आइएगा। कहना कि अश्विनी ने याद दिलाया था कि 4th of August को ये दिन मनाया जाता है, तो खाने पीने की चीज़ों के लिए भी ये दिन मनाए जाते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। आई वंडर हमारी एशियन कंट्रीज़ की जो डिशेज़ हैं उनके लिए कोई डे ऐसा दिया गया क्या? जैसे हमने मिर्ची बड़ा का बात किया, वैसे पानी पूरी डे, भेल डे, समोसा डे, कचोरी डे।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone, even people who know nothing about investing. Like Keith, who thought dividends were a boy band, Jessica, who thought compound interest was a prison dating app, and Sue thought FTSE 100 was a bit of under the table fun, which surprised her accountant.
3: Oh, no.
2: If we can make investing feel good for them, it's no wonder which have recommended us 8 years running. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
1: This is Ash Winnie on Leica Gold.
4: Leica Gold.
5: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
6: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
5: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
7: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Leica Radio Network.
10: Search is changing.
11: Customers aren't just using Google anymore.
10: They're asking AI.
11: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
10: One business, one recommendation.
11: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
10: Will your business be the answer?
11: Or the one that got left behind?
10: The future of search has already started.
11: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
10: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
1: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM. अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: बॉम्बे टू गोवा से सुनाए आप सभी को ये गीत। नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुनाने वाली है, लेकिन उसके पहले मिला लेते हैं घड़िया। 9:36, इट्स 36 minutes past 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दो चोर से सुना रही हूँ आप सभी को अगला गीत, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास।
1: दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। What's your travel mantra?
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: You know how fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. It's summer on the Leica Radio Network.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.03 इंडियन रुपी, 373.6 पाकिस्तानी रुपी, 451.46 श्रीलंकन रुपी, 166.41 बांग्लादेशी टाका, 88.26 अफगान अफगानी, 174.03 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर, 62.96 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £97.46 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए आखिरी बार मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 43 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. लाइका के हमारे जो अलग अलग चैनल्स हैं, गोल्ड नाइट्स, हमारी ओवर नाइट सर्विसेज ज़रूर सुनिएगा. लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2. एंड आज कम्प्लीटली 3 आवर्स हमने आपके लिए किशोरदा के गाने प्रस्तुत किए. जितनी वेरिएशन सारे प्रेजेंटर्स ला सकते थे, वी हैव गिवन द बेस्ट ऑफ बेस्ट किशोर कुमार सॉन्ग्स फॉर ऑल ऑफ यू. एंड आप लोगों के फीडबैक हमें दिख रहा है कि आप लोगों ने कितना एंजॉय किया है. अब लास्ट 2 ट्रैक्स के साथ में आप सबको मैं कहूँगी बाय, लेकिन ये 2 ट्रैक्स हैं कौन से? हाथी मेरे साथी से चल चल मेरे साथी, एंड लास्ट विल बी, अब बिना सलाम के तो निकल नहीं सकते, सो दोस्तों को सलाम. दैट विल बी द आखिरी ट्रैक ऑफ दिस आवर. कल भाई मेरा फेवरेट डे, 2 दिन इधर 2 दिन उधर, सो मिड वीक शो, दैट इज़ फील गुड वेंसडे मनाएंगे आप और हम साथ में. हमेशा की तरह इतना ही कहेंगे कि भाई ज़िंदगी जो है ना बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं. कम्युनिकेट करें, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है सामने वाले को नहीं पता तो बोल के दिखाइए. प्यार बहुत सुंदर इमोशन है, तो प्यार दो, प्यार लो. पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए ना, हम शो आप में से कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करता होगा. ऑन दैट नोट टिक टिक करते हुए घड़ी करिए, चलिए कहेंगे बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, हियर आई से बाय.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Cold Nights. Hit tracks non-stop throughout the night. This is Like a Gold.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-5748410। दैट्स 8574-8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
6: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Linecroft.
7: Cutthroat Ke Khiladi.
8: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
9: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
11: आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
2: फिर
0: फुर,
2: फुर,
0: फुर, फुर, फुर। बताओ नी बड़ी क्या बात हुई।
3: कह दो
0: कह दो कह दो कह दो।

0: रघुकुल रीत चला चती चल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचाना ना जाई
1: जाई जाई
0: बन चले।

0: ये गुड़म।
1: अरे अरे भालू आया?
2: नहीं आया।
1: तो फिर सो जाओ।
3: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।